ट्राफिक नियम को पालना गरो, सवारी दुर्घटना बाट आफू बचौ अरूलाई पनि बचाऊ। मादक पदार्थ तथा लागू पदार्थ सेवन करी सवारी साधन न चलाओ। हित क्षमता भन्दा बढी राखेर यात्रा नगरो। झुन्डिएर तथा छत में बसी यात्रा नगरो। सवारी साधन चलाउँदा मोबाइल फोन को प्रयोग नगरो। सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेर मात्र सवारी साधन चलाओ। सवारी धनीहरूले चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई सवारी साधन चलाउन नदियो। लापरवाही का साथ तीव्र गति में सवारी साधन न चलाओ। सवारी साधन चलाउनु पूर्व सवारी साधन को अवस्था ठीक छैन चेक जाँच गरेर मात्र सवारी साधन चलाओ। आफू यात्रा गर्ने स्थान सम्मको बाटो तथा मौसम को अवस्था को बारे में पूर्व जानकारी लिएर मात्र यात्रा गरो। सड़क में राखिएका सड़क चिन्ह तथा संकेतहरूको पूर्ण पालना गरो। जेब्रा क्रसिंग में बाटो काट्ने पैदल यात्रीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दियो। जथाभावी ओभरटेक नगरो। लेन अनुशासन को पालना गरो। पैदल यात्रीले सड़क को दायाँ साइड को प्रयोग गरो। घुम्ती मोडहरू तथा सड़क में रहकर खाल्डाखुल्डी समेतलाई ध्यान दिएर विशेष सावधानी अपनाई सवारी साधन चलाओ। अन्य सवारी साधन संग प्रतिस्पर्धा नगरो र ध्वनि प्रदूषण हुने गरी सवारी साधन न चलाओ। दुर्घटनाबाट जोगिनु जोगाउनु आम नागरिक सबैको दायित्व हो। ट्राफिक नियमको पालना गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य पनि हो।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा